0: सीआईएम चन्द्रपुरा कार्यकर्ता पदाधिकारीका सूचना अधिकारी राम बहादुर केसी
1: रोजगारी

0: बेटा को खाना में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम आयरन विटामिन और अन्य आवश्यक खनिज तत्व समावेश होने निश्चित करें। विविध खाने कुरा उचित समय में खुवास यदि बालबालिका उमेर अनुसार अंतरूका कमजोर व कुपोषित देखा नजीक को स्वास्थ्य चौकी व स्वास्थ्य कर्मी को सलाह में थप पोषिलो आहार दिनुहोस्।
1: स्वस्थ बाल बालिका समृद्ध परिवार समुन्नत नेपाल
0: सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन र ओल्ड भिजन इंटरनेशनल नेपाल को सहकार्य।

सालों साल है सामाजिक समस्या और समाज में निकाल दीने पड़े और कोने देना अप्रिय छोटा निर्वाचित के लिए कार्य समिति को निर्णय

0: शुरू गरे। अन्न केराबुटी साग सब्जी फल फूल सहित फसल पूरक खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म यसको कारण जारी छ कि
1: परिवार उपभोक्ता समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ।